0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: यदि आपने हमारी पहली भी सदस्यता ली है तो आपका धन्यवाद. आपके सहयोग से ही यह कार्यक्रम चलता रहा. आपकी वजह से आपके समुदाय की आवाज ऑन एयर है. अब समय है अपनी सदस्यता को नवीनीकरण करने का. सिर्फ सुनिए ही नहीं, इसका हिस्सा भी बनिए. फिर से हमसे जुड़े सिर्फ $11 कंसेशन के लिए या $16 फुल. ttzz.com.au पर जाएं या हमें कॉल करें 9415-1928 पर. पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट. यहां देखें चमकते खनिज, ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद. रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है. टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: एक यूथ जस्टिस वर्कर के रूप में आप हिरासत में लिए गए युवाओं की मदद करेंगे. यह एक सुरक्षित नौकरी है जिसमें वेतनीय प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. अगर आप समर्थन देने वाली टीम के साथ एक फायदेमंद करियर की खोज में हैं, तो यूथ जस्टिस करियर सर्च करें. ऑथराइज्ड बाय द विक्टोरियन गवर्नमेंट, मेलबोर्न.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Melbourne Museum की नई भव्य प्रदर्शनी Rome Empire Power People अब खुल चुकी है. ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन. मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें. बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmill Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
5: अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: नमस्कार दोस्तों, 3ZZZ 92.3 FM का गीतांजलि प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं अमित और इंदु तिवारी। तो दोस्तों, आज की शाम हम लोग बात करेंगे डिजिटाइजेशन की। जी, आज का विषय थोड़ा दिल को छूने वाला है, थोड़ा दिमाग को हिलाने वाला है। डिजिटाइजेशन, क्या ये हमें करीब ला रहा है या दूर कर रहा है? हमारा संतुलन बना रहा है कि बिगाड़ रहा है? एक तरफ पर व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग के 25 मैसेज आ जाते हैं और दूसरी तरफ घर में बैठे इंसान से आपको गुड मॉर्निंग बोलने का टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए, आज की इस डिजिटल दुनिया का आज हिसाब किताब कर ही लेते हैं। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं कुछ लोगों से, कुछ हमारे दोस्तों में, जिसमें है सुमिता, पूनम और रीना टंडन। और इसके बाद ही हम लोग एक दूसरे विषय पर बात करेंगे कि ये जो इतना जो हमारी मोबाइल फोन की टिंग पिंग दिन भर बजती रहती है और हमारा ध्यान पांच तरफ बढ़ता रहता है या कई कई बार उससे भी ज्यादा, तो ये जो मल्टीटास्किंग लोग बोलते हैं, ये हमारे जो मानसिक संतुलन को बिगाड़ रही है कि, और उसके साथ हमारे काम के प्रेशर्स भी कोई कम नहीं है बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आजकल की दुनिया में जो ध्यान जो आजकल बहुत हो गया है लोगों को कि आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, तो उसके ऊपर एक छोटी सी बातचीत हमने नम्रता मेहता जी के साथ करी है। तो उसका भी एक छोटे से सेगमेंट आपको बताएंगे कि वो इस हमारी जो ध्यान में बटी हुई पूरी हमारी जो दुनिया रहती है, हमारा जो मन रहता है, उसको हम किस तरह से एकाग्रचित करके अपने आप में थोड़ी सी शांति ला सकते हैं।

तो जी हाँ, जहाँ पहले हम चिट्ठी की वेट करते थे कि जो है डाकिया आ रहा है, वो हमारी चिट्ठी लेकर आया कि नहीं, और उसके बाद हम लोग वेट करते थे उसके रिप्लाई का। मुझे याद है जब मैं यहाँ पहले आई थी तो एरोग्राम्स लिखते थे, तो 15 दिन लगते थे पहुँचने में भारत। वहाँ से फिर वो लोग 1-2 दिन में जवाब देते थे, तो फिर 15 दिन वापस आते थे। तो 1 महीने में हम लोगों को पता चलता था कि क्या हो रहा है एक दूसरे के बाद। और जब चिट्ठी आती थी तो हम लोग क्या खुश होकर उसको खोलते थे। जब राखी का टाइम होता था तो कितने शौक से मैं भाई को अपने भेजती थी राखियाँ, और वो लोग भी वेट करते थे कि देखो ये मोटा सा लिफाफा आ गया, मतलब राखी आ गई बहन की। और फिर जीवन की भागदौड़, तो तब से चलते चलते आज के दिन हम आ गए हैं इस डिजिटल युग में।

0: और फिर वह दौर आया जब डिजिटाइजेशन हमारी जिंदगी में पूरी तरह से फुल एंट्री मार ली। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अब जूम और गूगल मीट, अब ये सिर्फ एप्स ही नहीं, हमारे रिश्तों की लाइफलाइन बन गए हैं। चलिए सबसे पहले हम सुमिता जी से बातचीत करते हैं, सुमिता वर्मा जी से, कि इनको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी से हम लोग को अच्छा है, हमारी जिंदगी बेहतर हुई है कि पहले से बेहतर नहीं रही है, या कोई खास फर्क नहीं पड़ा है?
1: रेनु, इसमें कोई शक नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत फायदे की चीज है, हमें पास भी लाई दुनिया के दूसरे लोगों से, लेकिन एंड यू नो जो कन्वीनियंस है आजकल के फैसिलिटीज में, जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि यू नो फेस टाइम, कोई शादी हो रही है आपके फैमिली, आप जा नहीं पा रहे हैं यू नो द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, आप फिर भी अटेंड कर पाते हैं थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग। बहुत सी मजबूरियां होती हैं लोगों को यू नो इन डिफरेंट प्लेसेस, तो आप अटेंड नहीं कर पाते हैं फिजिकली, लेकिन आप वर्चुअली अटेंड कर पाते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज या सबसे बड़े जो फायदा है टेक्नोलॉजी का, मुझे वही दिखता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि उसके डेंजर्स भी मुझे लगते हैं। एक तो ये टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेट करना भी थोड़ी मुश्किल की बात है। आप जैसे किसी से बात कर पाते हैं फोन करके, और जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो कम्युनिकेशन, वो आप तुरंत क्लियर कर पाते हैं उसी इंस्टेंट पे। टेक्नोलॉजी में कभी कभी ये नहीं हो पाता है। आप व्हाट्सएप में अच्छी अच्छी मैसेज लिखे, ईमेल मैसेज लिखेंगे, लेकिन उसका टोन, उसकी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग कभी कभी दूसरे पर्सन पे दूसरा इफेक्ट लेती है, जो विच इज नॉट योर इंटेंशन। तो ये सब भी थोड़े इनहेरेंट डेंजर्स हैं टेक्नोलॉजी की। और मुझे बच्चे यंग लोगों से बात करती हूँ, स्टूडेंट से बात करती हूँ, और अपने बच्चों के ग्रुप में भी कभी कभी देखती हूँ कितना यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी फॉर गाइडेंस या कोपायलट और व्हाटएवर। उसके बेनिफिट्स तो हैं ही, काम में हम लोग भी यूज करना शुरू किए हैं, लेकिन थोड़ी सी कंसर्न होती है जब वो कहते हैं कि हाँ तो मुझे ये पूछना था फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में, तो मैंने सोचा चलो चैट जीपीटी से पूछ ले, और चैट जीपीटी ने मुझे ये आंसर दिया। तो ठीक है, यूज करो टेक्नोलॉजी को, लेकिन कभी भूलो नहीं कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा यूजफुल वो इंसान होता है जिसने बनाया उसको। तो कभी इंसानों से भी बात कर लिया करो, जस्ट गेट अ रियलिटी चेक। ये मुझे लगता है डेंजरस बात, बाकी तो फायदा और नुकसान तो हर चीज में है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी।
0: जैसे कि आपने बताया कि आप एक चैट जीपीटी से अपनी एडवाइस मांग रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइस मांग रहे हैं, और मतलब आप उसके ऊपर काफी चीजों के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, सिर्फ आपको मदद नहीं ले रहे हैं कि आप बता रहे हैं। हालांकि मैं तो आप जानती हूँ कि किसी ने तो उनसे ये भी पूछ लिया, हालांकि शायद मजाक में ही शायद पूछा हो, कि मैं कब रिटायर होना चाहिए, मुझे मैं कब रिटायर होऊंगा, और मशीन ने जो भी क्वेश्चन पूछे होंगे तो उसके बाद चैट जीपीटी ने आंसर किया कि मुझे लगता है कि आप कम से कम 90 साल तक काम करेंगे। तो सुमिता जी, आपका क्या सोचना है?
1: जैसे कि एडवाइस सीख करना टेक्नोलॉजी से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू नो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर से बुरी बात नहीं, अच्छी बात है टू गेट गैदर बेस नॉलेज। दो मेन थिंग और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि लोग यूज करें टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट, लोग यूज करें टेक्नोलॉजी टू बी पार्ट ऑफ समथिंग, खासकर जब आप होने वहां पे फिजिकली होने सकते हैं, लोग यूज करें टू इन्फॉर्म। और इसमें कोई शक नहीं है, मैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट चीज है व्हाट्सएप या ईमेल और व्हाटएवर, लेकिन कभी वो ऑप्शंस ना क्लोज करें कि आप किसी दूसरे इंसान से एक्चुअली फोन से बातें करें या उनसे जाके मिलें, या लीव दैट डोर ओपन एंड डोंट जस्ट ट्रस्ट, डोंट डिपेंड सोलली ऑन टेक्नोलॉजी। यही आई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट।
0: जी हाँ, रिश्तों की जुबान तो दिल ही रहा है, और आंखों से भी हम बयां करते हैं, और उसमें जो रोमांटिसाइज होती है जिंदगी, उसकी तो बात ही कुछ और है।

0: जी हाँ, जहाँ डिजिटाइजेशन की और एकदम फटाफट देखें कि आप कहीं हॉलिडे पे जाते हैं और आप अपने फेसबुक पर अपनी फोटो अपलोड कर दी, उसका आपने डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, तो कई लोगों को एक साथ पता चल गया कि भाई ये कितनी सुंदर जगह है, देखो यहाँ पर क्या है, इसमें कितनी फायदे भी हैं। पर एक बात ये भी है, एक दौर जब था जब हम लोग हॉलीडेज के बाद एक दूसरे के घर जाके बैठते थे और बताते थे कि हमने क्या खाए, गए कहाँ, देखा क्या खाया, और वो साहब जी वो गुलाब जामुन वाली जो शॉप थी हलवाई बिल्लू राम की, उसके तो क्या ही तो गुलाब जामुन थे और क्या ही तो समोसे थे, तो आपको सुन सुन के ही जीभ में मतलब मुंह में पानी आ जाए। तो मुझे याद है कि हम एक बार, हमारे एक अंकल होते थे, हम बहुत छोटे थे उस वक्त, वो अमेरिका गए और हमारी फैमिली में मतलब मैं तो पहली बार जानती थी जो कोई अमेरिका से आया हो, और वहाँ से वो फोटो की जगह स्लाइड्स बनवा के लाए थे। तो उन्होंने कहा, उनके बच्चे का बर्थडे हुआ तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे के बर्थडे पर आप आइए और आप हमारे यहाँ हम स्लाइड शो देखेंगे कि अमेरिका की लाइफ कैसी है। मुझे वो जो एक्साइटमेंट था वो आज तक याद है। अपनी बेस्ट फ्रॉक पहन कर गए हम, और सबसे पहले तो हमने जाके वहाँ पे जहाँ पे खाना लगा हुआ था देखा, वहाँ पे इतना बड़ा केक रखा था, पहले तो ऐसे ही मजा आ गया केक देखकर, मतलब हमारे जमाने में उतने ज्यादा केक इतने पॉपुलर नहीं थे। और जब भैया सब केक वेक खाकर हम सब लोग जब बैठे, उन्होंने जो स्लाइड्स दिखाई, तो वो आज तक मेरे सामने, उनमें से कई स्लाइड्स जो है मेरे दिमाग में जैसे इम्प्रिंट हो जाती है। एक उन्होंने स्लाइड ली थी जो टाइम लैप्स के साथ, जो गाड़ियां वहां पर इतनी तेज चलती हैं, तो जैसे कि आप 3 सेकंड की उसको एक्सपोजर देंगे तो वो जो उनकी जो लाइट है वो आपको पूरी लाइन में दिखेगी। और उस वक्त इंडिया में तो 40 किलोमीटर बहुत है, 40 किलोमीटर भी आप पर आवर चल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो वो माई गॉड इतनी तेज, तो ये एक तो चकाचौंध थी उस दुनिया की, वो अच्छी लगी मुझे कि जो जिस पे किसकी तरफ हम सब बढ़ रहे हैं, और एक वो एक सिंप्लिसिटी थी कि हम 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, कि अपने नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसकी एक सुकून था। तो मैं ये बता रही हूँ टेक्नोलॉजी से मैं कितनी चकाचौंध जो लाई है, तो उसमें कितना सबको, क्यों हम सब लोग उसके पीछे जो है पागल से हुए जा रहे हैं। तो इसमें जैसे मुझे ऐसे दो बातें सामने आई, एक तो ये कि हम टेक्नोलॉजी से इतने ज्यादा आकर्षित क्यों हैं, क्योंकि वो हमें कितनी सारी चीजें इंस्टेंट आपको दिखा रही है, जो चीजें हम कभी पहले देख नहीं पा रहे थे वो हमें दिखा रही हैं कि वहां पे गाड़ियां कैसे चल रही हो, हम पूरी बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जैसे कोई मूवी देख रहे हो। और दूसरी बात ये कि आप इतने सारे लोगों को पता आज तक याद है कि उनकी अमेरिका की ट्रिप कैसी रही, पर और ये अच्छी बात है, पर ये यदि जब बार बार ऐसे ही रिपीट हो, आप ये आप 10 साल में एक बार देखें उसकी एक बात है, बार बार ऐसे ही रिपीट हो, तो क्या आपको उतना ही सुकून मिलेगा देखने में जितना कि आप रोज ही फेसबुक पर देखते हैं कोई कहीं घूम के आए, कोई कहीं घूम के आए, बल्कि आजकल तो देख देख कर ये और हो गया है कि अरे हम नहीं घूमने गए, सब घूमने चले जा रहे हैं, तो एक और वे एक कॉम्पिटिशन हो गई है। तो उसमें क्या वही ग्रेटिफिकेशन है कि वो ग्रेटिफिकेशन शायद कम होता जा रहा है।
1: पूनम आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
2: जैसे आपने बोला ना, दिस इज वन ऑफ दोज फैक्टर है कि टेक्नोलॉजी कैसे आई। सेम थिंग जब हम छोटे थे तो पहली बार डीवीडी आया था, तो पहले तो सब पिक्चर्स थिएटर में जाके देखते थे, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो पहली बार इवन आई मस्ट बी एट दैट सेम एज कि बिल्डिंग में, हमारे बिल्डिंग में फ्लैट्स थे तो डीवीडी आया, तो उनने सबको ग्रुप में बुलाया था कि आके उनके घर पिक्चर देखे। हम लोग लाइक टीवी पे पिक्चर आ रही है वो भी नई वाली, लाइक यू नो समथिंग न्यू, सो दैट वाज द फर्स्ट हिट। लाइक टेलीफोन वाज वन थिंग, वी डिडंट हैव टू डायल, इट वाज पुश बटन, देन इट वाज, सो व्हाट आई एम सेइंग इज स्लोली वी जस्ट गॉट, इट जस्ट इवॉल्वड, थिंग्स जस्ट केप्ट चेंजिंग, एंड देन नाउ इन द लास्ट 10 ईयर्स ज्यादा चेंज हुआ है। जब हम यहाँ आए थे तब टेलीफोन करना एक्सपेंसिव होता था, अब तो कॉस्ट ही नहीं है टेलीफोन की, जहाँ वाईफाई फ्री है अब वो कॉस्ट, तो उससे ये भी है कि सब एज ग्रुप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो ये सारी टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए यही है, दिस इज लाइक नो फियर। हम लोग थोड़े से फिर भी रेजिस्टेंट हैं ऑन चेंजिंग, सो मेरा देखने का नजरिया है कि things will continue to progress, it is up to us of what we adapt and how we adapt, and isme har cheez mein uske nuksan bhi hote hain jo adapt nahi kar pate, jaise aajkal hum log pay id karte hain ya phone pe pay karte hain, hamari यदि हमारा फोन टूट गया या गुम हो गया तो कितनी मतलब वो लॉस मुझे लगता है कि हमारी डिपेंडेंसी की वजह से ज्यादा हर्ट करेगा, बिकॉज हमें अभी किसी के भी 10 डिजिट नंबर याद नहीं है. पहले हमें अपने घर के फोन नंबर याद होते थे, पड़ोसी के याद रहते थे, मतलब आपके घर का फोन नंबर, मुझे लैंडलाइन याद होते थे, पर वो नंबरिंग बढ़ गई तो इट इज नॉट कि हमारी एज में स्पैन बढ़ गया था, यंगस्टर्स की तो और भी कम है. तो मुझे लगता है जिस मूवमेंट में टेक्नोलॉजी हो रही है वो थोड़ी चिंता की बात है. हम कोप नहीं कर पा रहे हैं, हमसे जो थोड़े और पहले वाले जनरेशन है वो स्ट्रगल कर रहे हैं. तो वो डिस्पेरिटी यदि इतनी फास्ट एआई आ जाएगा तो वो ये गैप और बढ़ जाएगा बिटवीन अडेप्शन एंड द पीपल हु आर वांटिंग टू अडेप्ट. अंडरस्टैंडिंग कहाँ से शुरू करें? आई वॉज टॉकिंग टू समवन एंड दे सेड what AI tool are you using to do some graphic? They said, I took a subscription of one. Within 6 months, that company shut. I had paid for 1 year because something better has come. So this movement of technology, movement of AI is very fast. I know this whole topic was on relationship, but then relationship between us and our children's understanding of how money needs to be managed, how messaging needs to be managed, with our parents, with our children will take text more than a phone call. Our parents will take and wait for our phone call. So relationship has changed, drastically changed. And I'm not saying there is bad or good. We just have to keep moving and adapting.
1: Reena, आपको क्या क्या लगता है इस बारे में? आप क्या सोचेंगे?
3: You know, it's so funny. आज मेरे को दिन में किसी ने एक forward भेजा. And that forward was कि एक lady 3 different sites पे पूछ रही है AI sites पर कि मुझे अपनी car wash के लिए लेके जाना है which is about 50 meters away but there is lot of traffic. So should I walk down or drive in the car? Can you imagine? Out of 3, 2 sites said because of the traffic you should walk. So you know, and that is so funny. Because sometimes people just don't want to use their brain. You know, whatever the site is saying, AI is saying, they would just follow. So anyways, but other than that, you know, something very interesting. I remember, Renu ko bhi dhyan hoga, 39 years back, you know, jab hum log Australia aaye the, and I was expecting our first child. Aur agar kabhi kisi cheez ki craving hoti thi, aur cooking to hum log karte hi nahi the shaadi se pehle. You know, we were all spoiled, I think. Phones were so expensive कि हम फोन पे रेसिपी नहीं ले सकते थे. जिसकी जिसकी क्रेविंग है हम एटलीस्ट मैं लेटर लिख के मम्मी को भेजती थी. एक हफ्ते में लेटर उनको मिलता था. एंड बिकॉज शी वॉज वर्किंग बाय द टाइम शी वुड फाइंड टाइम ऑन द वीकेंड टू रिप्लाई. फिर 2 हफ्ते में लेटर आता था. तब तक तो क्रेविंग ही खत्म हो जाती थी. और अब My daughter, she's in London. किसी दिन कुछ खाने का मन होता है और जब तक पूरा खाना नहीं बन जाता वो 1 घंटा 1.5 घंटा WhatsApp पे होती है, FaceTime पर होती है, no cost. So definitely, that is a big advantage, you know. If we look at our relationship, you know, way back then and in 4 decades, how things have changed. So I think जितना हम miss करते थे अपने parents को शायद हमारे बच्चे नहीं miss करते क्योंकि हमारी communication बहुत है, हम इतने आपस में contact में रहते हैं. So that is a very good thing, you know, it's a plus point. लेकिन along with that, I totally also agree कि हमारी communication skills इस sense में बढ़ गई है कि हम फटाफट किसी को message लिख के और बात कर लेते हैं. लेकिन Don't you all feel that वो जो human touch होता था, हम किसी को फोन कर रहे हैं, एक एक घंटा बातें कर रहे हैं, सब कुछ हाल चाल इमोशनल, एंड जब तक हम फोन रखते थे वो अलग बात है कि बच्चों का होमवर्क कराना है या टीवी चल रहा है या वॉट एवर, लेकिन हमारा हार्ट वॉज फुल, एक कंटेंटमेंट रहती थी हमें लोगों से बात करके. एंड अगेन अ लाइव एग्जाम्पल, आई कुड हैव मैसेज रेनू हाफ एन आवर बैक, बट इंस्टेड आई थॉट यू नो वॉट आई माइट एज वेल कॉल एंड हैव अ चैट. And that's how I came into this. So relationships pe farak padta hai, lekin I agree with the, all of you that har cheez ki ek jagah hoti hai. AI ki apni jagah hai life mein. And I think it is not एज रिलेटेड आई फील इंक्लिनेशन होना चाहिए. माय मदर शी इज 88 इयर्स ओल्ड एंड आई थिंक वो मेरे से ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी को जानती है क्योंकि उनका इंटरेस्ट है. मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं खाली उतना ही यूज करती हूँ जितनी मेरे को जरूरत है. Whereas she is retired, she has got a lot of time, she has got interest and she will keep, she was in Insta, I think way back then when I was, you know, she has been in Facebook for years. I've never been on Facebook, you know, things like that. So wo apna interest bhi hota hai ki unko lagta hai this is the way that I can communicate, I can be in touch and know more about, you know, what's happening around.
4: नहीं, आई अग्री रेनू. आप लोग सब जो कह रहे हैं ऑल वेरी वैलिड पॉइंट्स. ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज मेड आवर लाइफ बेटर. ऑफ कोर्स इट्स अलाउड अस टू यू नो बी इंक्लूडेड इन थिंग्स, टू यू नो टू टेक पार्ट इन थिंग्स. एंड इफ आई कांट बी समवेयर देन एटलीस्ट आई कैन गेट अ ग्लिम्प्स यू नो ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट. वो तो अनडिनायबल है. And I would rather see, you know, my grandchildren's face in FaceTime than not see them at all or see them on the phone. All those things totally undeniable. I guess my only caution is, and my bachcho ko bhi kehti hu, and I kind of see that in the young people that are with, that let's not use technology to A, opt out of life or opt out of difficult things, you know, especially just like ghosting someone, you're dropping someone, you're avoiding someone, you know. Sometimes people, especially young people, use that technology a lot, you know. Khatam, band kiya, chahe Facebook se kiya, chahe WhatsApp se kiya. It's not, it doesn't give you the skills to deal with a difficult situation, okay, doing things that way. And secondly, chahe aap jo bhi keh lo, you know, the time that I spend FaceTiming my son, and then if he gives me half a morning, no comparison. I'll have that half a morning every time. So wo bhi zaruri hai, you know, to have the physical, just time, the precious time that one person, one friend, one, you know, family member can give you. It's like a gift that technology can't give you. So as long as we have those things in mind, I think, you know, use technology. We, you know, that's what it was created for, and we're all using it to our benefit.
0: Mm-hmm.

0: to be a right balance.
1: Huh.
0: You can't just rely on one thing or the other. You can't just say, I want to wash away my hands from technology because mujhe samajh mein nahi aata. Because samajh mein nahi aata, toh you are going to be at a loss. Because you are not going to be part of the WhatsApp group in your family. You would not know what's happening, what's the latest. So, you know, so just the right balance. And nobody can replace human touch. Nobody can replace the wisdom and the experience of your parents or, you know, even if you want to give any advice to your kids, to unko idea mil jayega. You know, from AI, what to do under such circumstances. But jo hum logon ka anubhav hai, jo humara experience hai, usse jo hum unko sikha sakte hain, bata sakte hain, wo AI to nahi kar sakta.
1: Reena ji, aapne bilkul theek kaha ki ye santulan banaye rakhna bahut zaruri hai. Ek uske upar hum log phir aage baat karenge, par ek cheez mujhe aur karni thi, jo bacche log jo aajkal टेक्स्ट पे टेक्स्ट करे जा रहे हैं, फोन नहीं करते, तो ये क्या ये जनरेशनल गैप आप समझते हैं कि ये उनका उनको कनेक्शन नहीं करना आता है? आप लोगों का क्या विचार है?
0: जस्ट यू नो उन बच्चों का नेचर है, दिस इज द थिंग, यू डोंट पिक अप द फोन टू कॉल एंड टॉक अनलेस यू रियली हैव टू. जो चीज मैसेज से हो जाती है उसके लिए फोन क्यों उठाया जाए?
2: एंड वी हैव आल्सो गिवन देम दैट कॉन्फिडेंस.
3: Yeah. I think that the other thing is that you note this generational difference, and I agree with all of you. I think it is a generational difference. It's just they just approach communications
2: differently,
3: in a different way, you know. And that's the way it is. It's more curated for them. It's they don't accept in the old paradigm. But I think for us, we also have to accept that that's the way it is. If they think that's appropriate, that's the way it is. If we have to talk about it, फोन उठाएंगे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी तो उठा के बातें कर लेंगे. एंड यू समटाइम्स हैव टू लेट इट गो एट दैट. ये हमारी प्रॉब्लम है. आई स्टिल यू नो आई मीन आई अग्री विद ऑल ऑफ यू कि डोंट रिलाय ऑन टेक्नोलॉजी सो मच दैट यू फॉरगेट हाउ टू कनेक्ट विद पीपल. दैट्स द डेंजर यू हैव टू वॉच आउट फॉर. बट यू ऑल्सो कैन ओनली टेल द यंगर जनरेशन ओनली सो मच, एंड आफ्टर दैट व्हाट दे डिसाइड टू डू इज व्हाट दे डिसाइड टू डू.
1: इतनी प्यारी बातचीत के बाद हम लोग इसी से एक सेगवे देते हैं कि ये जो रीना ने बात की थी, संतुलन बनाए रखना है. भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था, योगः कर्मसु कौशलम्, यानी हर काम में संतुलन ही योग है.

0: तो ऐसा है कि इस भागदौड़ की जिंदगी में हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम अपने आप के अंदर झांकें, अपने आप के अंदर देखें। तो देखिए ऐसा है कि सब, मैंने भी सोचा ध्यान से शुरू करते हैं क्योंकि हर कोई बोल रहा है मेडिटेशन करो लाइफ बदल जाएगी। मैंने कहा चलो हम भी अपनी लाइफ अपग्रेड कर लेते हैं बिना सॉफ्टवेयर अपडेट के। तो पहले दिन हम बड़े कॉन्फिडेंस से बैठे, आंखें बंद करी, 5 सेकंड में ही माइंड बोला अरे फ्रिज में जो मिठाई रखी है वो किसने खाई। मैंने कहा अरे भाई ध्यान कर रहे हैं। माइंड बोला हाँ हाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी तो जरूरी है, किसने इतनी खा ली। फिर मैंने यूट्यूब पर मेडिटेशन का वीडियो लगाया, वहां पर एक आवाज आई क्लोज योर आईज रिलैक्स, और नीचे एड चल रहा है फ्लैश सेल 70% ऑफ। अजी साहब तो शॉपिंग पे ज्यादा ध्यान लग गया। तो ध्यान में थॉट्स नहीं आने चाहिए, अरे भैया थॉट्स तो ऐसे आते हैं। तो मैंने एक दिन सोचा आज बिल्कुल सीरियस ध्यान करेंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और तभी फोन का वाइब्रेशन हुआ। बस फिर क्या है, व्हाट्सएप में ही ध्यान शिफ्ट हो गया। और ध्यान में बैठते ही अचानक याद आता है कि जो पुरानी बात 2008 में हुई थी उसका जवाब देना चाहिए था। माइंड भी ना गूगल ड्राइव से भी पुरानी फाइल्स निकाल लेता है। तो चलिए इसी हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे नम्रता मेहता जी से, जो हाल ही में मेलबर्न की विजिट पर थी और उनसे मेरे साथ कुछ बातचीत करने का मौका मिला। तो वो अपने आध्यात्मिक गुरु सिद्ध गुरुवर श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव के मार्गदर्शन में रची बसी हैं और उन्होंने प्रभावशाली सिद्धासन रिट्रीट और कार्यशालाओं का नेतृत्व किया है। इसमें गाइडेड मेडिटेशन होता है, आत्मा केंद्रित अभ्यास होते हैं और उपचार और आत्मचिन्हत और परिवर्तन के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण बनाते हैं। तो चलिए हम इससे बात करते हैं।
1: तो आज हम लोग कुछ रोजमर्रा के जीवन में हमारे साथ जो यहाँ पर परेशानियां आती हैं, जो हमारी सोच होती है, लोगों को जो समझ में नहीं आती, उसके बारे में कुछ मैं बात करूंगी। तो आजकल जैसे हम लोग, अभी मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अभी हाल ही में रिटायर हुई हूँ, तो जहाँ पे ऊपर जाते हो सीढ़ी में लगता था हमारे लंच टाइम में योगा सेशन, मेडिटेशन सेशन, एंड हम लोग सोचते माय गॉड हमारा काम तो खत्म हो गया, हम किस तरह से आधा घंटा निकाल के वहां पर योगा करेंगे। और मेडिटेट करने कहीं गए भी तो वहां सब बैठे हुए यहाँ पे बैठे ओम ओम, हमें समझ में नहीं आया कि उसका हमारा मतलब क्या है, जबकि मैं हिंदू हूँ मुझे समझ में आना चाहिए ये सब। तो मैं आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछूंगी कि मेडिटेशन क्या होता है, आपको क्या अचीव करता है, आपको क्या है, मतलब सिर्फ ओम चुपचाप बैठे रहने से बोलने से आई एम श्योर इसका कोई और मीनिंग होगा जो हमारी बॉडी में आना चाहिए, उसके बारे में कुछ हमारे लोगों को बताइए।
2: रेनू जी, हम अपनी लाइफ में हमेशा देखिए गोल्स रखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी कि मुझे ये गोल अचीव करना है, या पर्सनल लाइफ में भी कि ना इस उम्र तक मेरी शादी हो जानी चाहिए, इस उम्र तक मेरे बच्चे हो जाने चाहिए, उस उम्र तक मेरे बच्चों के अच्छी चीजें और उनकी मैरिज हो जानी चाहिए, मतलब हर चीज में हम रिजल्ट ओरिएंटेड है कि मुझे अचीव करना है, मुझे गोल को पाना है। अब हमने मेडिटेशन को भी वही बना लिया है कि मेडिटेशन में हम देखते हैं कि लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है, या वो आंख बंद करते हैं तो हमने किताबों में पढ़ा कि उनको लाइट दिखती है या उनको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होता है, यू नो। और जब हम वही चीज कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि अरे मुझसे तो हो ही नहीं रहा है ये चीज, मैं तो आंख बंद तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे तो वो कलर दिख नहीं रहा है, मुझे डिवाइन लाइट नहीं दिख रही, मुझे फोकस नहीं हो रहा है, या मुझे वो क्यों नहीं फील हो रहा है जो बाकी लोगों को फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मेडिटेशन को भी गोल बना दिया है। हर चीज तो गोल है, कम से कम कोई तो एक चीज हो जहां पे गोल नहीं हो। सो मेडिटेशन अगर आप करने बैठे हो, सबसे पहली चीज, देयर इज नथिंग टू अचीव इन मेडिटेशन। प्लीज अगर आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं तो बिना गोल के बैठे कि मुझे कुछ नहीं पाना है, मैं बस, मेरे पास जो है, नथिंग, आई डोंट वांट टू अचीव एनीथिंग, आई एम जस्ट सिटिंग एंड फीलिंग माय सेल्फ, ओके। एंड इवन बिफोर रीचिंग दैट मैं बोलूंगी कि आपको अगर बड़े ध्यान में उतरना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पहले अपनी लाइफ को ध्यान से जीना सीख लें। कि मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप आंख बंद करके एक जगह पर ध्यान लगाकर बैठ गए विद मंत्र चैंटिंग, वो हायर स्टेज ऑफ लाइफ है। पहले हमें अपने ध्यान को छोटी छोटी चीजों में लाना है, जैसे हमें एक हैबिट है कि हम खाना खाते वक्त मोबाइल फोन देखकर खाना खाते हैं या टीवी देखकर खाना खाते हैं, तो यानी कि वो उसकी वाइब्रेशन हमारे खाने में जा रही है, हमारा ध्यान हमारे खाने पे है ही नहीं, और हम एक की जगह दो रोटी खा रहे हैं, तीन रोटी खा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा पेट भर गया है, तो ध्यान तो है ही नहीं. यू नो, हम वॉशरूम जा रहे हैं तो वहां पर भी अपना मोबाइल लेकर जा रहे हैं, तो वॉशरूम में भी आइदर रीडिंग अ बुक और यूजिंग योर फोन. तो मैं कहूंगी कि पहले हमें ध्यान से हर चीज को करना है. अगर आप ब्रश कर रहे हैं, आप ध्यान से करें. आप खाना खा रहे हैं, आप सिर्फ एक समय पर खाना खाए, ध्यान से खाना खाए. आप अगर नहा भी रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप टीवी भी देख रहे हैं, एक समय पर एक काम करें. मल्टीटास्किंग हमें नहीं करना है, ताकि हमारी ब्रेन को एक ट्रेनिंग मिले. हम सोचते हैं कि हम इमीडिएटली बैठे और हमारा माइंड ट्रेन हो जाए शांत होने के लिए. ये सब पॉसिबल नहीं है. पहले आपको माइंड को ट्रेन करना होगा कि हर काम को मैं ध्यान से करूं. मैं खाना बना रही बैठे और हमारा माइंड ट्रेन हो जाए शांत होने के लिए, ये सब पॉसिबल नहीं है. पहले आपको माइंड को ट्रेन करना होगा कि हर काम को मैं ध्यान से करूं. मैं खाना

0: भी एक सीढ़ी है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना है। तो इसकी पहली सीढ़ी है अवेयरनेस। आपको पहले हर चीज में अवेयरनेस को लाना है। जब आपकी पूरी लाइफ अवेयरनेस में जीना आ गया आपको, डे में दिनचर्या आपकी, फिर धीरे धीरे आपको ये कॉन्शियसनेस आने लगेगी कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है।
1: आपने बोला जो चीज करो ध्यान से, एक चीज करो ध्यान से। आजकल का जमाना तो मल्टीटास्किंग का हो रहा है कि एक ये भी करो वो भी करो, कि कितने सारे काम है दिन में, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार है?
0: आप देखिए, पुराने जमाने में हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एक समय पर एक ही काम करते थे ना, मल्टीटास्किंग भी अगर करते थे तो भी उनका फोकस डाइवर्टेड नहीं होता था, इट यूज टू बी ऑन वन थिंग, राइट? नाउ जितनी जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारा माइंड भी क्योटिक होते जा रहा है।
1: बिल्कुल सही बोला, क्योटिक इज द वर्ड,
0: क्योटिक होते जा रहा है। तो हमको इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, उसको हमें यूज करने नहीं देना है, राइट? क्योंकि हम उसके कंट्रोल में हो रहे हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट होते जा रहा है, करेक्ट? तो इन 10 सालों में जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जितना मल्टीटास्किंग बढ़ा है, उतनी ज्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो उसका रिजल्ट तो हमें दिख रहा है सीधा, कि मल्टीटास्किंग करने से हमारी आज क्या हालत हो रही है। मल्टीटास्कर होना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक कला है कि आपको कब करना चाहिए और कब नहीं। आप पूरा दिन ही बैठ के मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो आप पूरा दिन स्ट्रेस में ही जी रहे हो। योर ब्रेन, योर नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। अगर आपका हमेशा सिंपैथेटिक ही एक्टिव रहेगा तो आप तो एंग्जाइटी के पिल्स ही खाओगे, आपको नींद नहीं आएगी रात को अच्छे से, आपका मन शांति नहीं रहेगा। तो अगर आपको ठहराव लाना है तो मैं मानती हूँ कि कुछ जगहों पर मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, लेकिन आप अपने जीवन में पॉज भी लाओ। अगर आपको पता है कि एक सिचुएशन आई है जहां पे मुझे 2-3 काम एक साथ करना पड़ा, कोई बात नहीं, करने के बाद 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट ही सही, आप ठहराव से बैठ जाओ। और कुछ नहीं तो ठहराव से सामने किसी एक चीज को फोकस करो, एक ट्री को देख रहे हो, एक क्लाउड को देख रहे हो, एक मून की एनर्जी को देख रहे हो, कुछ नहीं तो स्टार को गेज कर रहे हो, एनीथिंग विद द नेचर। आप अपने आप में 5 मिनट के लिए एक चीज पर फोकस करके कुछ मत सोचो, बस उसको देखते रहो, वो ही आपके अंदर ठहराव ला देगा, हीलिंग एनर्जी, है ना? तो जितनी आपकी कियोटिक एनर्जी बाहर की हो रही है, आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न वर्ल्ड को हम नहीं बदल सकते, लेकिन वी हैव टू लर्न कि हाउ वी कैन बैलेंस अवर एनर्जी विद ऑल दिस सिचुएशंस। हमारे आसपास जो सिचुएशंस है उससे हमें ही खुद को बैलेंस करना होगा। तो आपको बीच बीच में अपने दिन में पॉज के एलिमेंट को लाना है, यानी कि साइलेंस, मौन की ऊर्जा। मौन की ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है। तो जब भी आपको लगे पूरे दिन में कि बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे लिए, नहीं हो पा रहा, आप एक अपने आप में जाइए, बाहर बैठिए और अपने आप में ठहराव लाइए। 5 मिनट के लिए आप चुपचाप बैठ जाइए, कुछ नहीं करना, सब गैजेट्स को साइड में रखिए एंड जस्ट ब्रीद।
1: एक चीज पर है, आपने बोला कि हम सब लोग की महत्वाकांक्षाएं तो इतनी है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ऑफिसर भी सबसे बड़ा ऊंचा पद चाहिए, मेरे बच्चे भी परफेक्ट होने चाहिए, मेरा घर परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग और सब जगह यही, अब टीवी में भी एड देखो तो यही दिखाते हैं कि सब चीज इतनी अबंडेंस में और सब इतनी परफेक्ट हो रही है, बॉडी भी, फिगर्स भी सबकी परफेक्ट है सब। तो ये हम लोग सबकॉन्शियसली तो एब्जॉर्ब करते ही है, हम भी चाहते हैं कि हमारा, हमारी भी लाइफ ऐसी हो। तो आपने जो बोला उसको उधर, और यही शायद क्योटिक, ये भी इसका रीजन है क्योटिक बनने का, क्योंकि आपको इतना सारा कुछ चाहिए, पर मे बी वो तो उसके बीच में कुछ आपको सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं।
0: ये रेणु जी मेन है, ये सब सोच का खेल, राइट? ये हमें क्या मिल रही है, सोसाइटी से एक सोच मिल रही है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वहां तक भी पहुंचना है, और हम कहीं ना कहीं अपने लाभ से भी सेटिस्फाइड नहीं है और अपनी लाइफ से भी सेटिस्फाइड नहीं है, अपने रिश्तों से भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हमारी सोच है, राइट? तो अगर हमें अपनी सोच को चेंज करना है कि मैं चाहता हूं कि मुझे दूसरे से जेलसी नहीं हो, है ना, मैं चाहता हूं कि मैं, मेरे पास जितना है उससे सेटिस्फाइड हूं, और मैं ये फोकस करूं कि मैं रोज कैसे ग्रोथ हो रहा हूं, राधर देन सीन की सामने वाला रोज ग्रो कर रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है?

0: सोच का खेल है, इट्स ऑल योर थॉट प्रोसेस. तो अगर हमें अपनी सोच को बदलना है तो हमें ये देखना होगा कि रोज तो मैं खाना खा रहा हूं, अब खाना खाने से मेरी बॉडी तो नरिश हो रही है, लेकिन रोज मैं अपने माइंड और सोल को क्या दे रहा हूं नरिश होने के लिए, करेक्ट? वो मेरी सोच को अपलिफ्ट करेगी. तो मैं अपने कानों से क्या सुनती हूँ, आंखों से क्या देखती हूँ, ये भी बहुत बड़ी एक भोजन है मेरे माइंड के लिए, मेरे सोल के लिए. तो रोज अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये जो भाग दौड़ है, ये कंपैरिजन है, कंपटीशन है, या एक ब्लेम है कि किसी ने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया, यू नो somebody else is responsible for my thing, बोलते नो ब्लेम इज अलाउड. जिंदगी में ब्लेम अलाउड ही नहीं है, आपकी जिंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो ब्लेम इज अलाउड, नॉट इवन द डिवाइन इज रिस्पॉन्सिबल, यू आर कर्मा एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. बट वो अवेयरनेस कैसे लाना, अपनी सोच को बदलकर. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे होगा कि सोच कैसे हम
1: बिल्कुल कैसे बदलो आप,
0: राइट? तो सोच की फीडिंग के लिए आपको रोज 5 चीजें करनी होंगी अपने आप में, अपनी चीजों को और बेहतर करने के लिए. सबसे पहली चीज, अगर आप एक मीटिंग में बैठे हैं और आपकी बॉडी में दर्द है, तो क्या आप मीटिंग में अच्छे से फोकस कर पाएंगे? आपकी सोच वहां पर रहेगी? नहीं रहेगी. तो जरूरी है पहले कि आपकी बॉडी की एनर्जी अलाइंड हो, राइट? क्योंकि अगर दर्द रहेगा तो माइंड की सोच में नेगेटिविटी रहेगी, गुस्सा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड और सोच अच्छी हो, तो सबसे पहले आपको अपने बॉडी पे वर्क करना है. रोज आपको 15 मिनट कोई ना कोई तरह का मूवमेंट करना है, चाहे वो योगा है, वॉकिंग है, एनी काइंड ऑफ फिटनेस दैट यू बिलीव इन. क्योंकि जितना बॉडी में मूवमेंट रहेगा उतना माइंड की सोच अच्छी रहेगी. सेकेंड, आपको रोज 15 मिनट ब्रीदिंग करना है. सिद्धासना में हम ये सारी चीजें ही सिखाते हैं कि आप किस तरह से इसको इम्प्लाई कर सकते हैं, क्या मूवमेंट कर सकते हैं, क्या ब्रीदिंग कर सकते हैं जिससे आपकी एंग्जाइटी कम हो, नींद अच्छी आए. तो 15 मिनट जब आप ब्रीदिंग करते हैं, 15 मिनट्स ऑफ ब्रीदिंग इज एडिंग 1 डे एक्स्ट्रा टू योर लाइफ. इतनी पावर ब्रीदिंग में होती है अपने आप में. ब्रीदिंग का सीधा असर आपकी सोच पर पड़ता है, आपकी इमोशन पर पड़ता है. तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी, जैसे आप घर की सफाई करते हो रोज, वैसे ही ब्रीदिंग आपके मन की सफाई करता है. तो आपके अंदर की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जेलसी है, ये नहीं बोलूंगी कि आपका पैशन कम हो जाएगा, पैशन को रखना है, बट उसको सही दिशा देना है कि वो ये दिशा रखे कि मैं कैसे ग्रोथ कर रहा हूं, ये दिशा नहीं रखे कि दूसरा वाला मुझसे ग्रो कर रहा है. वो क्या करेगा, मेरी एनर्जी को कम कर देगा. तो मुझे अपनी गोल पर फोकस रखना है, अपने पैशन पर फोकस रखना है कि मुझे क्या अचीव करना है, बिना इसके जेलसी, कंपटीशन और कंपैरिजन के. उसके लिए आपको ब्रीदिंग की बहुत जरूरत है कि आपका गुस्सा, आपकी जेलसी, आपकी इनसिक्योरिटीज कैसी बैलेंस रहेगी जब आपकी सांसें, आपकी प्राण एनर्जी आपके साथ रहेगी. वो भी एक रिदम में फ्लो करती है, वो एक बहुत बड़ी साइंस है. उसके लिए तो अपने आप में 1 घंटे का सेशन है, वो हम पूरा एक 7 डे के रिट्रीट में लेते हैं कि प्राण कैसे वर्क करती है आपके बॉडी में. फिर तीसरी चीज आती है कि आपको रोज अपने आप में 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप बैठ सके, आप अपने आप में साइलेंस में बैठे. चाहे आप किसी चीज को आंख खोल के ऑब्जर्व कर रहे हैं, आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं, बट आपको मौन रहना है. मौन मतलब सिर्फ यहां से मौन नहीं, यहां से मौन. तो जब आप मूवमेंट करके ब्रीदिंग करेंगे तो अपने आप में आपको मौन की एनर्जी फील होगी नेचर के. तो जब आप वो करते हैं तो आपकी मन की एनर्जी स्ट्रांग होती है. और रोज, ये सिद्ध गुरुवर की सबसे बड़ी टीचिंग है जो मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ. ये 5 चीजें ये मैंने उनसे सीखी और इसने मेरी लाइफ को चेंज की, इसीलिए मैं आप सबसे ये शेयर कर रही हूँ. और ये हजारों की लाइफ को बदलते हुए मैं देख रही हूँ कि रोज आप 15 मिनट कुछ अच्छा देखें. देखना मतलब कि कोई अच्छी किताब पढ़े, कोई अच्छी चीज ऐसी देखे जिससे आप कुछ नया सीख रहे हैं. योर ब्रेन इज डेवलपिंग, ग्रोइंग. आप वही चीज रोज नहीं करनी है, आपको रोज अच्छा सीखना है, तभी तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका माइंड और ब्रेन ग्रो होगा. और रोज आपको 15 मिनट कुछ अच्छा सुनना है. या तो आप सुबह उठते ही सुने या सोने से पहले सुने, क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस 1000 times stronger होता है. तो जो चीज हम उठते ही पढ़ते हैं या सोने से पहले पढ़ते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में 1000 times मल्टीप्लाई हो जाता है। तो रोज हम कुछ ऐसा सुनकर सोए या उठते ही सुने जिससे कि हमारी सोच अपलिफ्ट हो। जितनी एलिवेटेड हमारी थॉट प्रोसेस होगी उतनी एलिवेटेड हमारी लाइफ होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन लाएं, अपने लाइफ में पीस ऑफ माइंड लाएं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी थॉट को एलिवेट करना होगा। और इसीलिए सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल, जो सिद्धासना हम ये प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम ये मेन फोकस करते हैं कि इंसान की सोच को इन सारे टेक्निक से डेवलप किया जाए, कि जैसे ही सोच बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा।
1: अच्छा, आपने सोच की बात की, कुछ अच्छा सुनना चाहिए, कुछ हमेशा अच्छी, जैसे कहते हैं कहते हैं अपने फ्रेंड्स भी अच्छे वाले रखो, जैसे ऑब्वियसली आपकी सराउंडिंग होती है। तो मैं अपने पोते को हमेशा बोलती हूँ भाई, हमें हम बताए गए थे हनुमान चालीसा पढ़ के सो हनुमान, तो वो उसको रट गई, पूरी उसको रट गई, फिर काफी 5-6 साल से बोल रहा है वो। पर मुझे लगता है कि ठीक है वो कर रहा है, वो तो अच्छी बात है, पर जब तक उसको हम लोग को समझ में नहीं आया हम क्या बोल रहे हैं, हम के जैसे, तो वो कैसे लाए? सिर्फ हम गायत्री मंत्र भी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को उसका मीनिंग तो समझ में आना चाहिए ना, सिर्फ पैरट की तरह बोलने से तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका इसमें क्या विचार है?
0: देखिए, कभी कभी कुछ अच्छी चीजें बिना मीनिंग जाने भी अगर हम करते हैं तो भी उसका इम्पैक्ट होता है हमारा, क्योंकि उसकी अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, राइट? बट अगर आपको उस चीज का मीनिंग नहीं भी पता है लेकिन आप किस इंटेंशन के साथ बोल रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। कई बार लोगों को मीनिंग भी पता होता है और वो पूरा दिन अगर उसको रट भी रहे हैं, लेकिन अगर उनका अंदर से भाव और इंटेंशन पवित्र नहीं है तो उनको वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जो अगर आप एक मिनट के लिए भी बैठकर अगर सच्चे मन से और भाव से सही इंटेंशन के साथ अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो उसका आप पर वही इम्पैक्ट होगा, मोर देन पूरा दिन करने से भी जो नहीं होगा वो एक मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन सही है। क्योंकि मंत्रा क्या है, मंत्रा इज लाइक आपके मन में क्या चीज, एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे दुनिया में हर चीज एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, वैसे ही आपकी बॉडी की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। जब आप कोई मंत्र चैंट करते हो तो उसकी जो ऊर्जा है वो आपकी बॉडी की नेगेटिव ऊर्जा को हटाकर आपकी चेतना को, आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करती है ना। तो आपकी मन की ऊर्जा मंत्र अपलिफ्ट करती है, तो मन के लिए सबसे अच्छी चीज है मंत्र। इसलिए बोलते ना कि अगर तुम्हें और कोई मंत्र भी नहीं है बट एक मंत्र है जो आपके दिमाग में हमेशा चलता है, आपकी थॉट्स, थॉट्स इज योर बिगेस्ट मंत्र। इसीलिए बोलते हैं कि सही तरह के थॉट्स हमें रखने हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी मंत्र है जो हम कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं और वही हम मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। तो आप भले ही ओमकार करो, आप हनुमान चालीसा करो, इनकी अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता है तो भी आपके शरीर पर उसका इम्पैक्ट होगा, और अगर आप उसको सही इंटेंशन के साथ करो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 1000 times और आपके साथ। What really matters in your life, God does not see your actions, He sees your intention. वो आपके action को नहीं देखते, वो आपके intention को देखते हैं। तो अगर आपका intention सही है मन का, तो अपने आप से ही आपकी जो मन की स्थिति है, आपकी intention से ही उसके blessing से अपने आप ही connect हो जाती है। So आप अगली बार जब भी मंत्र chant करें या अपने thoughts के मंत्र पर भी अगर आप work करें, ये बहुत जरूरी है कि आप सही इंटेंशन के साथ करें कि आपको यूनिवर्स की एनर्जी रिसीव हो, कि आपकी मन की ऊर्जा करना है। तो ये जब आप ध्यान करने लगते हैं या मेडिटेशन रोज अपने लाइफ में लाते हैं, अपने आप से आपके अंदर क्षमा की भाव आती है, कंपैशन आता है, लव आता है। इट इज ऑल अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो जो व्यक्ति ध्यान से जुड़ा है उसके अंदर हर चीज के लिए करुणा का भाव होता है। तो ये जो साइकिल है ना गिल्ट का, अपने आप में बेचैनी का, वो समझ बदलने के लिए आपको भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ध्यान को लाना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी कि एक होता है ना नेचुरल एसेंस ऑफ लव। जैसे जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो माँ के अंदर प्रेम भरना नहीं पड़ता है, उसके अंदर से वो उमड़ता है नेचुरली, है ना, नेचुरली कम्स टू हर. वैसे ही जब आप ध्यान में उतरते हैं, हाउ टू रिलीज, अपनी चीजों को कैसे खाली करना और कैसे, अगर वो चीज आपसे नहीं छूट रही है तो उससे आगे कैसे बढ़ जाना, इस तरह के अलग अलग ध्यान हैं जो हम सिद्धासना में कराते हैं, जिससे इंसान को हम वहां पर एक एक चीज सिखाते हैं कि कैसे आप ध्यान से और ब्रीदिंग से इन चीजों को अपनी लाइफ में छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इट इज पॉसिबल. तो दो चीजों पर वर्क करना है, अपनी सोच पर और दूसरा अपने लाइफ में ध्यान की एनर्जी को लाना है, जिससे कि आपके अंदर का जैसे ही लव एलिमेंट बढ़ेगा ये सारी चीजें अपने आप छोटी लगने लगेगी. स्मॉल थिंग्स बोलते ना, पेटी थिंग्स लीव देम एंड आई टेक द प्रिटी थिंग्स.
2: साथ ही हमारा जाने का वक्त करीब आ रहा है, अगले हफ्ते गीतांजलि प्रोग्राम आपके सामने फिर हाजिर होगा. तब तक लिए नमस्कार.